वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी बोलो। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।

0: थैंक यू।
1: मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आई कैन फील साईं बाबा सिटिंग एंड गिविंग मी ब्लेसिंग्स। सो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज बम्स व्हेन आई एम सिंगिंग दिस सॉन्ग। सो

मुझे एक चीज का रिग्रेट हमेशा रहेगा कि मैं साक्षात बाबा के सामने लेक बहुत बहुत मन था मेरा बहुत पहले से कि मैं आऊंगा, मैं मुझे सुनाना है गाना। आज मुझे मौका मिला है, कहीं ना कहीं मुझे भी फील हो रहा है कि लाइक काश और पहले आ चुका होता मैं यहां पर।

इसी गाने से मुझे एक शेर याद आया। दीवानों की नजरों से, दीवानों की नजरों से खुदा देख रहा है, दीवानों की नजरों से, दीवानों की नजरों से खुदा देख रहा है।

निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई न चढ़े सवाई। हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए। जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए। पौड़ी तू सच्चा साहब आप है, सच सा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए। प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है, गुण कथे निरारे। सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवै तिसदा कदे ना होवी भला। उस दे आखे है कोई ना लगै, नित उजाड़ी पुकारे खला। जिस अंदर चुगली चुगलो वज्जै, कीता करत्या उसदा सब गया। नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मोकट न सके उसदा काला भया। कर्म धरती शरीर कलयुग विच, जिहा को बीजे तिहा को खाए। गल्लां उपर तपावस न होई, विस खादी तत्काल मर जाए। भाई वेखो न्याओ सच करते का, जिहा कोई करे तिहा कोई पाए। जन नानक ओ सब सो जी पाई, हर दर कियां बातां आख सुनाए। महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तनको दर ढोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाई। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाही। जिन गुर गोप्या अपना, से लैंदे टहा फिराही। तिन की भुख कदे ना उतरै, नित भुखा भुख कूकाही। ओना दा आख्या को ना सुनै, नित हौले हौल मराही। सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे था ओ नाही। जो सतगुर मारे तिन जाय मिलै, रहंदी खोंदी सब पत गवाही। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे ओस मिलै तिस कुश्ट उठाही। हर तिनका दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। तुर करता आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक ना मारा तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाही। महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया, ते जन की वड्याई वड्डी होई। तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई। तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरया। गुर पूरा सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई। अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आप बैठकिया। आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी, काया कोटिया भार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस माले। नाम निदान हर बन जिये हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले। से उजड़ परम पवाई है, ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग मैं होया। नरक कोर दुखू है, ओथे पकड़ ओह टोया। कूक पुकार को ना सुने, ओह औखा होए होए रोया। ओन हलत पलत सब गवाया, लहा मूल सब खोया। ओह तेली संदा बल्द कर, नित भलके उठ प्रभ जोया। हर वेखै सुनै नित सब किश, तिदू किश कुजा ना होया। जैसा जैसा बीजै सो लुणै, जिहा पुरब किनै बोया। जिस कृपा करे प्रभ अपनी, तिस सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछै तर गया, जो लोहा काट संगोया।
जन नानक नाम ते आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड भागियां सोहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राए, अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाए। पौड़ी, एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेव कड़े खोत। सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया एको ओत पोत, एक देखिया एक मन्या एको सुनिया श्रवण सरोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस्तिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले तिन को सब देखण जाए। जिन निरपौ नाम ते आया तिन को पौ कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया जिन को तुर लिखिया आहे। ते हर दरगह पहनाई है जिन हर मुठा मन माहे, ओए आप तरे सब कुटुंब स्यों दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे। जन नानक कहो हर मेल जन तिन वेख।